संगे गुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी।

0: हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,
1: हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन

अरदास एको ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कर नौन दया वै धाए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां के स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतका रखा आपा काल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहेब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी का ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार सहज पाठ आरंभ करवा रहे हैं सहज पाठ की सीडी बनाने की सेवा कर रहे हैं सिर ते मेहर भरे हथ रखना सीडी बनाने की सेवा करदिया होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी पाठी सिंह दे सिर ते मेहर भरे हथ रखना शुद्ध बाणी पढ़न दी समर्था बख्शनी पाठ आरंभ करन दी आग्या बख्शो अमृतम वई मुख वाग बख्शो। छे पौड़ियां अनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सच खंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदिया विखे वसाउणा कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है आप जी दरते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संगत दी रसनी लायक होवे जो शके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबता भला। दोहरा आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैले राज करेगा खालसा या की रहे न कोए खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए खुआर होए सब मिलेंगे।

जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करह कराम है स्वामी सा मसलत परवान। रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी, चरण सरण नानक दास हर हर संत।

जाए मन जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठाक ना पाए मन पास्यों प्रगट जाए, मन मगन चले पंथ मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।

लेखा लिखिया केता हुए केता तानस वाले रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कौन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो पक्षार असंख मोहन लिवलाए तार कुदरत कौन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल बढ़ात्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी

वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोक, करह आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै तंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पमन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत।